0: उसको पकड़ मेका ठिकाना नहीं
1: कोई हाकिना मराय इज इन सिडनी ट्रू और फॉल्स Poi Hākena Marae is in Sydney. True or false? False. Poi Hākena Marae is in Whangaroa.
2: Upoku Pakaru Resources proudly sponsored by Waikato Taimi.
3: Te Waharoa ki te ao marama.
4: Te Waharoa with him.